0: उनी थिए विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी प्रदीप कुमार कोइराला साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब देश बाहिरको एउटा खबर। भेनेजुएलाको ला गोएरा राज्यमा 106 घण्टासम्म भग्नावशेषमा फँसेका 21 वर्षीय एक पुरूषलाई जीवितै निकालिएको देशकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले बताएकी छन्। गत बुधबारको उक्त विपदमा कम्तीमा 1450 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भए तापनि हजारौं अझै बेपत्ता रहेकाले उक्त संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट।
1: गत साताका दुई ठूला भूकम्पपछि उद्धारकर्ताहरू जीवन बचाउन यतिखेर निकै महत्वपूर्ण प्रयासमा जुटिरहेका छन्। भेनेजुएलाका अस्पतालका भित्ताभरि बेपत्ता मानिसहरूका तस्विरहरू टाँगिएका पाइन्छन्। त्यहाँ रहेका एकजना ब्रिटिस अग्नि नियन्त्रक भन्छन्, धेरैजसोलाई जीवितै भेटाउन सामान्यतया 96 घण्टाको समय हुन्छ, जुन आइतबार साँझ सकिएको छ। त्यसैले उद्धार टोलीहरू अब उनीहरूकै शब्दमा चमत्कारिक उद्धारको आशामा रहेको उनी बताउँछन्। मुख्य खोज तथा उद्धार प्रयासहरूमा अझै पनि स्थानीय स्वयंसेवक एवं अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरू संलग्न छन्।
0: अब अन्तिममा देशभित्रकै एउटा विषय। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेसँगै निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् 2013 बनेको उक्त निकुञ्ज अहिले बाघ अवलोकनका लागि गन्तव्य बन्दै गएको छ भन्छन् नेपालगंजबाट विमला चौधरी आफ्नो यो रिपोर्टमा।
2: विगत 2 वर्षको तुलनामा यस वर्ष पर्यटकको संख्या दोब्बर भन्दा वृद्धि भएको बताउँछन् बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र कडेल।
3: आर्थिक वर्ष 81-82 मध्येमा 444 जना पर्यटक एक वर्षमा हुनुहुन्थ्यो, गत वर्ष 620 जनाले गरेको देखिन्छ। तर यो वर्षको असारको 9 गतिसम्ममा 1427 पर्यटकहरूले भ्रमण गरिसक्नु हाम्रा केही त्यस्ता एकदम अहम पोखरीहरू छन्। ती पोखरीहरूमा हामी बिहानको समयमा बेलुकीको समय अथवा दिउँसोको समय गयो भने एकदमै सजिलै बाघ देख्न सक्ने एकदमै चान्सेस हाई छ।
2: नेचर गार्ड एसोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष भीम डाङ्गीका अनुसार हाल 12 जना नेचर गार्ड पर्यटकलाई निकुञ्ज भ्रमण गराउन सक्रिय छन्। नेचर गार्ड शान्ति चौधरी भन्छन्,
4: पर्यटकहरूको संख्या चाहिँ न्यून भएकोले चाहिँ मैले गाइड गर्ने अवसर चाहिँ पाएको थिएन। यो वर्ष चाहिँ हप्तामा 3-4 वटासम्म सफारी हुने गरेको छ।
2: बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज केवल बाघका लागि मात्र प्रसिद्ध छैन, यहाँका घनासालका जंगल, चुरे पहाड, कलकल बग्ने खोला नाला र विभिन्न दुर्लभ वन्य जन्तुले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेका छन्। निकुञ्जसँगै जोडिएको गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरी,
5: नेपालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै पाइने चौसिङ्गाको अवलोकनदेखि लिएर बाघको अवलोकनसम्मको भ्रमणमा हामीले देखाउने भूबनोटको पनि रमणीय खालको भएको हुँदाखेरि पर्यटकहरू असाध्यै मन पराउनुहुन्छ।
2: निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार पहिलो सातासम्म 1427 जना पर्यटकले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरिसकेका छन्। पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट मात्रै यस वर्ष निकुञ्जले 432,150 रूपियाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। विमला चौधरी, बीबीसी नेपालगंज।
0: हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। अब भोलि बेलुकी 9:15 हामी फेरि उपस्थित हुनेछौ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
6: Et juste une toute dernière question. En tant que directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, pensez-vous qu'il y a des avancées dans le domaine spatial et est-ce qu'il existe des leçons aujourd'hui que les autres États peuvent tirer de l'expérience ou des expériences du Sénégal?
7: Oui, tout à fait. Et les avancées sont là et c'est bien palpable. Le Sénégal, pour parler de notre cas, a mis en place son agence spatiale en 2023. Nous sommes à la 3e année d'existence et en l'espace de 3 ans, il y a eu énormément d'acquis qui sont là en termes de développement de coopération internationale, en termes de développement de projets, en termes de développement d'infrastructures sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement, qui font que les pays qui n'ont pas encore emboîté le pas dans la création d'une agence spatiale consultent l'agence spatiale sénégalaise et les pays qui viennent juste de créer leur agence spatiale également n'hésitent pas à nous solliciter pour voir comment nous avons fait pour mettre tout cela en œuvre dans un laps de temps aussi court. 3 ans, c'est juste le temps d'installation. mais nous avons mis les pieds sur l'accélérateur, sur l'aspect diplomatie, pour être une agence spatiale très dynamique en l'espace uniquement de quelques années. Et ça, bien entendu, les projets sur lesquels nous sommes pour l'agriculture intelligente, les projets sur lesquels nous sommes sur la surveillance maritime, les projets sur lesquels nous sommes pour la recherche en astronomie, astrophysique, toutes ces questions liées au spatial sont aujourd'hui sujet de discussion entre des pays qui ont l'ambition de suivre les pas du Sénégal ou d'autres pays avec qui nous avons des programmes en commun. Nous sommes sur un projet extrêmement important actuellement avec l'agence spatiale du Rwanda, du Ghana, du Kenya et du Sénégal, financé par la JICA et l'agence spatiale japonaise JAXA.
6: Merci beaucoup, Monsieur Maram Kairé. BBC Afrique vous remercie pour tous ces éclairages.
7: C'est moi qui vous remercie.
8: Vous écoutez BBC Afrique, Antananarivo, 89.2 FM.